0: Au fromage. Au fromage. Oh, fromage et Paris. Et Côte d'Azur. Et haute couture, fil se dur. Oh, Tour Eiffel. Rita Schnell. Rame Camel. Oh, une wunderbare Strand Café. Oh, une Baguette Rosée. Un Beaujolais. Et Café. Oh, oui, oh. Au fromage. Un blamage. Un légumage.
1: हाँ आज खुशी का दिन है आया निकला मुहूर्त चंगा भाई सूट